0: राजन, शलेन, रोयलेन, कृषि, शिवलेन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति, भूतपूर्व नसोले 6 माइल्स नसीनू के शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि राजन, शलेन, रोयलेन, कृषि, शिवलेन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति नसोले 6 माइल्स नसीनू के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि जेनिशा काजल के पिता माउंट रोस्किल के आनंद राम और वीना वती राम के पुत्र जूलियन अविकाश राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप स्टीवन को 0221-077-631 पर कॉल कर सकते हैं। जेनिशा काजल के पिता माउंट रोस्किल के आनंद राम और वीनावती राम के पुत्र जूलियन अविकाश राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार रविवार यानी कि कल दिन में 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप स्टीवन को 0221-077-631 पर कॉल कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: जबरदस्त हिट्स
3: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम वेदर अपडेट।
0: द 5th of August के लिए बताया गया है कि मौसम मुख्यतः साफ रहने वाला है। अ चांस ऑफ सम शावर्स साउथ वेस्टर्लीज टर्निंग नॉर्थ वेस्टर्ली दिस इवनिंग। आज दिन में धूप ही धूप खिली रहेगी, कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, अन्यथा मौसम साफ ही रहने वाला है। आज दिन में टेम्परेचर 17 डिग्रीज तक जाने वाला है, ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज होने वाला है।
2: Bollywood's biggest hits.
4: Yo.
2: Big radio pop.
0: बारह बजकर 6 मिनट हो चुका है और हर रविवार को जब 12 बज जाते हैं तो आप तो जानते हैं कि आपके लिए रेडियो पब खुल जाता है, जहां पर मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो जाता हूं। आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं 104.2 एफएम और रोबा के मार्फत से। हमारी जोड़ी आज यूं ही बनकर चलने वाली है राइट टिल 6 PM। तो क्या आप तैयार है फॉर प्रोग्राम फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, जहां पर हम आपको दुनिया भर की खबरें पहुंचाते हैं, प्लस खेल कूद की दुनिया में क्या कुछ नवीनतम हो रहा है, क्या कुछ हुआ है ओवर द वीक, ये भी आपके लिए जानकारियां हम लेकर आते हैं। तो भाई पेटी बांध लीजिए और अगर कस के बांधी हुई है थोड़ा सा ढीला कर ले, क्योंकि बस आराम करना है, मौज करनी है और रेडियो पब में दो दो घूंट लगाने हैं इन्फॉर्मेशन के, मस्ती के और म्यूज़िक के। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का विद दिस ऑसम ऑसम विचार। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बात पर आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है और ऐसे में मन की शांति ये भंग हो जाती है? वेल, अगर मन की शांति चाहिए तो हर बात को साबित करना छोड़ दीजिए, अपने आप को हर वक्त प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। स्वागत कर रहे हैं आप सभी का रेडियो पब में, मैं हूँ जिकाश।

buzzfmfm.com पर आप हमारे पास ईमेल्स भेज सकते हैं रिगार्डिंग इवेंट्स एंड प्रमोशंस। अगर आप कुछ कम्युनिटी में इवेंट्स कर रहे हैं जिसकी जानकारी आप चाहते हैं कि तमाम लोगों तक पहुंचे एंड आपके यहां पर आपके इवेंट्स में फुट ट्रैफिक या फिर लोगों की तादाद ये ज़्यादा रहे तो ईमेल आप लिख लें buzz@humfm.com और यहाँ पर आप डायरेक्टली हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे अबाउट द बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट जो फिजी में जारी है। आज डे टू में ये प्रवेश करने जा रहा है एंड कीप एन आई आउट ऑन आवर फेसबुक प्रोफाइल क्योंकि वहाँ पर कल के जो मैचेस हुए हैं उसके अपडेट्स हम डालने वाले हैं, क्या स्कोर्स रहे हैं और आज कौन कौन सी टीम्स खेलने वाली हैं एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम, ये भी जानकारी आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन फेसबुक वेरी वेरी शॉर्टली। तो कीप एन आई आउट ऑन आवर फेसबुक पेज।

0: smile right there.
1: Streaming on Rover.
2: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
3: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
4: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
5: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
6: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
5: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
7: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो।

0: Radio Pub. You're listening to Chikash.
1: ऑलराइट, तो बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट जो फिजी में जारी है, इसके कई सारे फॉलोअर्स हैं. पीपल पे सब्सक्रिप्शंस टू वॉच दीज सोका मैचेस लाइव, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो. जो लोग फिजी सोका को पसंद करते हैं, दे जस्ट लव फॉलोइंग देयर ओन डिस्ट्रिक्ट. तो आज चार मैचेस होने वाले हैं, कल चार मैचेस हुए हैं जिसके अपडेट्स हमने डाले हैं ऑन फेसबुक, तो डू गो देयर एंड चेक इट आउट. लेकिन अभी सवाल आपसे हमारा ये है, बैटल ऑफ द जाइंट्स ये ईयरली ऑर्गेनाइज होता है, फिजी फैक्ट बैटल ऑफ द जाइंट्स, इसके साथ में द इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप IDC. क्या आपको मालूम है कि इस साल का बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट ये किस शहर में होस्ट किया जा रहा है? Which town is hosting the Battle of the Giants 2026 tournament? 5599 पर अपना जवाब हमारे पास भेजिए. Also, let me know कि आप कहाँ पर हैं. अगर आप रोवर पर सुन रहे हैं तो भाई डू लेट मी नो कि रोवर पर आप सुन रहे हैं. जानकर अच्छा लगेगा कि कुछ लोग, कितने लोग हमारी तरह मेहनत कर रहे हैं. एंड यू आर स्प्रेडिंग योर लव बाय क्लिकिंग ऑन टू दैट रोवर ऐप एंड लिसनिंग टू अस जहाँ कहीं पर भी आप है. तो रोवा अगर आपके पास है एंड इफ़ यू आर हेडिंग आउट ऑफ टाउन, मेक श्योर कि आप हमें सुनते रहे 24/7. आपके लिए हम एक से एक बढ़कर लाजवाब कंटेंट और एंटरटेनमेंट लेकर आते रहते हैं. सवाल है, बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट 2026 ये फिजी में किस शहर में खेला जा रहा है? इस गीत के बाद में हम NRL पर नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ पर अब्दवाज, वेल दे आर राइट अप द लैडर इन द पॉइंट्स टेबल. देखेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में.

Alright, before we dive into NRL, आपसे सवाल हमने किया है कि Battle of the Giants टूर्नामेंट जो फिजी में हो रहा है, हर साल होता है, इस साल किस शहर में ये धमाकेदार टूर्नामेंट जारी है? Day 2 में प्रवेश कर चुका है ये टूर्नामेंट आज, और इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे बारी बारी से, जैसे हमारे साथ हमारे पास खबर आते हैं अबाउट मैच अपडेट्स। एंड एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप फैन हीटर यूज़ करते हैं, विंटर से तो हम निकल चुके हैं लेकिन ठंड अभी भी है, तो शायद यू आर समवन हु यूटिलाइजेस फैन हीटर्स, वो हीटर जिसमें फ़ैन होता है और इलेक्ट्रिक हीट से, इलेक्ट्रिक कोयल से हीट प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इफ़ यू हैव बॉट फैन हीटर्स फ्रॉम द वेयर हाउस, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, देर आर टू हीटर्स जिनको रिकॉल किया जा रहा है। मॉडल नंबर आप देख लें, मॉडल नंबर है ZFH019M, ZFH019M, दैट्स द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज ZFH019M-OS। तो एक है जो ऑसिलेटिंग फैन हीटर है जो घूमता रहता है, और एक है स्टेशनरी वाला, मॉडल नंबर्स है ZFH019M। नाउ इसमें कुछ सेफ्टी को लेकर टेस्टिंग को इस हीटर्स ने फेल किया है। द प्रोडक्ट इज बीइंग रिकॉल्ड एज द सेलेक्टर स्विच होल्डर एंड द रोटरी स्विच ब्रेकर हैज फेल्ड रेलेवेंट फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग, और इसके कारण से इसको अब रिकॉल किया जाता है क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द टेस्टिंग अंडर द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ एबनॉर्मल ऑपरेशन और ओवरहीटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, दिस कंपोनेंट मे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्ट कैचिंग फायर। तो बहुत ही ज़रूरी है, दिस माइट कैच फायर। तो ZFH019M एंड ZFH019M-OS, अगर ये हीटर्स आपके घर में हैं, दीज आर दी लिविंग एंड को ब्रांडेड हीटर्स, फैन हीटर्स 2000 वाट का, आप इसे लेकर जाए वेयरहाउस में और वहाँ पर आपको फुल रिफंड दिया जाएगा, रिसीट्स की आवश्यकता नहीं है। जस्ट चेक द मॉडल, इफ़ यू हैव दीज मॉडल्स टेक देम टू द वेयरहाउस, इसको अब यूज़ करना तुरंत ही बंद कर दीजिए। ऑलराइट, NRL जहाँ पर हमारी टीम मतलब कि द वॉरियर्स ये बहुत ही कमाल कर रही है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर ये सबसे ऊपर है बाय जस्ट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट्स डिफरेंस में। पैंथर्स 40 पॉइंट्स पर है विद 308 पॉजिटिव पॉइंट्स, और हमारी वॉरियर्स दे आर एट 40 पॉइंट्स विद 309 पॉजिटिव गोल पॉइंट्स डिफरेंस। तो मात्र एक ही पॉइंट्स डिफरेंस से, गोल पॉइंट डिफरेंस से आगे है, और आज वॉरियर्स खेलने वाली है एट 5 PM सी ईगल से। तो क्या दे कैन एक्सटेंड देयर लीड, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है फॉर अस टू फिनिश द राउंड रोबिन मैचेस बीइंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, ताकि हम भी कह सकें कि यार हमारी टीम ने भी अच्छा ही किया है, क्योंकि सभी टीम्स तो ऑस्ट्रेलिया से है और न्यूजीलैंड की एक ही टीम है। तो वॉरियर्स टेकिंग ऑन सी ईगल्स एट 5 PM, काउबॉयज एंड रेडर्स प्लेइंग एट 7:30 PM, एंड आज 9:35 पर शार्क्स और स्टॉर्म खेलने वाले हैं। कल दो मैच होगा, ड्रैगन्स एंड ईल्स एट 4 PM एंड पैंथर्स टेकिंग ऑन वेस्ट टाइगर्स एट 6:05 PM। मान लिया जाए बोथ वॉरियर्स एंड पैंथर्स विन देयर गेम्स, इट विल कम डाउन टू हाउ मेनी पॉइंट्स they win their games with। तो यही हम चाहते हैं कि वॉरियर्स they finish their matches their match on a high। आज गो मीडिया स्टेडियम पर ये मैच होगा एट 5 PM। सवाल हमने आपसे किया है कि the battle of the giants tournament जो फिजी में हो रहा है ये कहाँ पर, किस शहर में हो रहा है? राज, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट एंड लिसनिंग योर प्रोग्राम एट होम विद सन जेकब एंड डॉटर श्रुति, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे यू आल्सो राज, थैंक यू फॉर योर मैसेज। जितेन सिंह पापाटोटो से आपने भी मैसेज किया है, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं, तो अपना नाम भी आप ज़रूर लिखे। प्रामा महाराज जी हैं एट होम लिसनिंग टू द प्रोग्राम, आप सभी को इस अगले गीत में शामिल कर रहे हैं।

0: भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: Farmers has the best gifts for Dad with great grooming products, skincare and the latest fragrance and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for Dad.
4: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m. handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
5: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. All together, Auckland.
6: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
7: The masalas are ground fresh, in-house every single day.
6: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party, table service or buffet for up to 150 guests.
7: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
6: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
10: Yeah.
8: Big radio pub.
11: सत्रह मिनट रह चुके हैं एक बजने में। मैं हूं जिकाश और आपका साथ देता चलूंगा राइट टिल 6 पीएम। इफ यू हैव जस्ट जॉइंड, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट जो गाड़ियां खरीदने वाले हैं, खरीदने की बारे में सोच रहे हैं। एंड यू आर आउट देयर लुकिंग फॉर कार्स, चाहे वो ब्रांड न्यू शोरूम से हो या फिर सेकेंड हैंड कार्स। बोथ आर एक्सलेंट ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर रीजनिंग। लेकिन अगर आप मार्केट में हैं एंड यू आर लुकिंग एट second hand cars and you are looking at cars that are of higher values, जैसे कि एंटिक हो गया या फिर मसल कार्स हो गए, मोस्टली पीपल खरीदते हैं, डू अप करते हैं एंड देन दे सेल इट ऑन। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आप है, यू आर लुकिंग फॉर डन अप कार्स और सेकेंड हैंड कार्स अगर आप खरीद रहे हैं विच आर ऑफ अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो आई वुड सजेस्ट गेटिंग फुल NZ व्हीकल रिपोर्ट। और ये कारजेम वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको मिल सकता है बाय जस्ट पेइंग $13.95 फॉर ए कार रिपोर्ट, जहाँ पर फुल व्हीकल रिपोर्ट होता है जिसमें शामिल होता है व्हीकल्स हिस्ट्री कि क्या इसको धक्का लगा है, इसको फिर से बनाया गया है, हैज़ दिस व्हीकल बीन डी रजिस्टर्ड, इफ़ सो क्यों डी रजिस्टर हुआ है, वॉज दिस व्हीकल स्टोलन, इसके ऑनरशिप कन्फर्मेशन आपको मिलेगा एंड इज़ दैट व्हीकल अविंग एनी मनी टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल ही में एक किस्सा हमारे सामने आया है जहाँ पर एक व्हीकल, a very high end vehicle had sustained significant damage and was written off by the insurance company, par isko phir becha gaya to a car dealer instead of being deregistered। jab write off ho jata hai vehicle to isko deregister kar dena chahiye, lekin aisa hua nahi aur is gaadi ko becha gaya to a car dealer, jis dealer ne then unsold the luxury Audi e-tron vehicle विदाउट डिस्क्लोजिंग इट हैड बीन डैमेज्ड। तो किसी बंदे ने उस गाड़ी को ख़रीदा ये ना जानते हुए कि इसको बहुत सारा डैमेज हुआ था और इसको राइट ऑफ किया गया था, और फिर ही वॉज ओनली नोटिफाइड ऑफ द सिचुएशन और ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years, 2 साल इसको यूज़ करने के बाद इनको पता चला कि दिस का हैड बीन एन एक्सीडेंट एंड वॉज सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड, और डीलरशिप ने ये बात उनको नहीं बताई। फिर इस गाड़ी मालिक ने डीलरशिप को कॉन्टेक्ट किया, डीलरशिप गेव हिम हिज मनी बैक और फिर गाड़ी को दोबारा बेचने की कोशिश की विदाउट एनी मेंशन ऑफ द कार्स हिस्ट्री। मई में यह हुआ है। ट्रिस्टम यूरोपियन इन ऑकलैंड वॉज फाउंड टू हैव ब्रीच्ड द फेयर ट्रेडिंग एक्ट बाय द मोटर व्हीकल डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग व्हाट इट न्यू टू द ओरिजिनल बायर इन 2024। The saga began in 2023 when dozens of cars were damaged during the Auckland anniversary floods. तो अगर आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं ऑकलैंड में, ये बात आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पर एक 2023 में एक फ्लड आया था जिसके कारण से काफ़ी गाड़ियाँ डैमेज हुई थी। तो क्या आप ऐसी गाड़ी तो नहीं खरीद रहे हैं जो फ्लड डैमेज्ड है? मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलिजेंस। मैं जिकाश, रेडियो पब में मैं आपका साथ दे रहा हूँ।

0: Yo.
1: Big Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं चिकाश.
2: Alright, सवाल का जवाब आप हमारे पास भेजते रहे. सवाल याद है ना? सवाल है अबाउट द बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट जो फिजी में हो रहा है, फिजी फुटबॉल एसोसिएशन के अंडरनीथ. तो ये टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है और इसको लेकर कुछ बातें सामने आई थी अबाउट द कॉर्पोरेट बॉक्स. कॉर्पोरेट बॉक्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो दिस इज़ ए सिक्लूडेड एरिया जहाँ पर यू कैन ब्रिंग योर वर्कमेट्स या फिर बिजनेस पार्टनर्स टू एन्जॉय अ पर्टिकुलर मैच, जहाँ पर आपके लिए अलग से जगह बनाई जाती है फॉर योर एन्जॉयमेंट एंड योर कम्फर्ट. भीड़ भाड़ से दूर ये आपका सिक्लूडेड एरिया रहता है जिसको आप खरीदते हैं. एंड ये ध्यान में रखा जाता है कि नॉर्मल सीट से ज़्यादा कम्फर्ट उस इलाके में होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू एंड फ्रॉम दैट प्लेस और इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग द मैच, having a better view of the match than everybody else in the stadium. So 7500 around ye Fiji mein becha gaya and it was a tent with a chair, and that also around the end of the grounds. So isko lekar kai sare logon ne nirasha vyakt ki thi ki bhai itna sara paisa खर्च करने के बाद भी जो सीट्स मिल रहे हैं, जो व्यूइंग पोजीशंस मिल रहे हैं, इट्स नॉट बेटर देन द जनरल सीटिंग अरेंजमेंट्स. तो एनीवेज ये खेल जारी है फिजी में. बैटल ऑफ द जाइंट्स कहां पर हो रहा है, इन विच टाउन ऑफ फिजी, ये जवाब आपको देना है. थोड़ी देर में विल गिव अ शाउट आउट टू हमारी कॉन्टेस्टेंट मिस अर्थ 2026 पेजेंट जो हुआ है इसी साल. हमारे यहाँ से कौन गई थी और क्या कुछ नाम इन्होंने अपना रोशन किया है, न्यूजीलैंड का नाम किस तरह से रोशन किया है इन दी मिस अर्थ 2026 इंटरनेशनल पेजेंट, कौन थी ये, इनके बारे में कुछ जानकारी बस थोड़ी देर में.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. No matter what you're working on, Mitre 10 Mega Westgate or Henderson, aapke liye sab kuch aasan banata hai. Zabardast range, expert advice, everything you need under one roof. Plus earn air points every time you shop. T's and C's apply. Mitre 10 Mega Westgate and Henderson, helping you get it done right.
3: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi OnePlus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
4: Bunnings Warehouse.
3: Lowest prices are just the beginning.
5: What day is Father's Day? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: Zabardast hits.
8: Shuru ho jaye to rukte nahi.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Hum.
10: Yo.
7: Radio Pub.
11: एक बज चुके हैं रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ 5599 इज़ आवर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप हमें हमारे पास मैसेज कर सकते हैं या फिर 0800-004-866 पर कॉल्स भी आप कर सकते हैं लाइंस ओपन है इफ़ यू वांट टू हैव अ क्विक चिट चैट या फिर कुछ जानकारी है जो आप हमसे चाहते हैं या फिर कुछ जानकारी है जो हमारे तक आप पहुँचाना चाहते हैं तो ज़रूर इसके लिए हम लाइंस ओपन किए हुए हैं The Indian Film Festival New Zealand ये भी बस अगले ही मोड पर है ऑकलैंड वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में कुछ खास फिल्में दिखाई जाएंगी ड्यूरिंग द इंडियन फिल्म फेस्टिवल न्यूजीलैंड जो 22nd से 25th अक्टूबर के बीच में है और कुछ खास मेहमान भी हमारे शोज़ ग्रेस करने वाले हैं तो कौन है भाई आने वाले हैं जिनके साथ में होकर आप कुछ ऑसम मूवीज़ क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ या फिर इंटरनेशनली अक्लेम्ड मूवीज़ आप एंजॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंडियन फिल्म फेस्टिवल न्यूजीलैंड 22nd से 25th अक्टूबर के बीच में तो इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे एंड इस गीत के बाद में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 19th एनुअल मिसिस अर्थ पेजेंट इंटरनेशनल फाइनल्स जो हुआ जुलाई 21 से जुलाई 26 के बीच में एट द विंडम ग्रैंड बंगसर इन कुआलालंपुर इन मलेशिया तो किसने क्या कुछ जीता है और हु रिप्रेजेंटेड न्यूजीलैंड एट द मिसिस अर्थ पेजेंट इसके बारे में कुछ जानकारी बस इस गीत के बाद में

All right, time for a big shout out to all the hustling ladies out there. And ladies, jo shadishuda hai lekin apne ghar grihasthi ko sambhalte hue apne sapno par bhi kaam kar rahi hai. And one such lady is Sheetal Bhatt, jinhone hissa liya tha in this year's Mrs. Earth Pageant, International Pageant mein. And this is an established international pageant with a long-standing history of 19 years. And Sheetal Bhatt ka kehna hai ki, I was honored to be placed in the top 5 internationally and proudly returned to New Zealand with 2 titles. Inko in dono khitab se nawaza gaya hai, that is the Elite Mrs. Earth Eco Queen and the Elite Mrs. Earth Tourism Queen. Now, I think that's a great achievement, because being in New Zealand, we are very proud of our environment, kis tarah se hum khayal rakhte hain apne desh ka, and also tourism, because tourism ye ek bahut hi bada hissa hai for our New Zealand economy. So shout out to Sheetal Bhatt, Elite Mrs. Earth Eco Queen and Elite Mrs. Earth Tourism Queen New Zealand. और अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पर Sheetal Bhatt Sheetal Bhatt Elite Mrs. Earth Eco and Tourism Queen 2026 ये आप लुकअप करें. विल अगर हो सका, इफ़ शी इज़ अवेलेबल, विल ट्राई टू हैव अ बिट ऑफ चिट चैट विद हर टुडे, या फिर हमारे अन्य अनाउंसर्स विल बी गेटिंग इन टच एंड इनसे बातें करेंगे अबाउट हर जर्नी, किस तरह से इनको किन किन जरिए से लोगों ने प्रोत्साहित किया है और कैसे इन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया है. तो शाउट आउट टू Sheetal Bhatt, एलीट मिसिस अर्थ इको क्वीन एंड एलीट मिसिस अर्थ टूरिज्म क्वीन 2026.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: सौरभ मिनट हो चुके हैं एक बजकर एंड सवाल हमने जो पिछले घंटे पर किया था अबाउट द मैच द टूर्नामेंट बैटल ऑफ द जाइंट्स जो फिजी में हो रहा है वेल ऑफकोर्स ये बा में हो रहा है फोर आर स्टेडियम में एंड जितने भी हमारे पास मैसेज आए हैं दीज आर फ्रॉम द पीपल हु आर इधर फ्रॉम बा या फिर ये बा सोका को एंड बा टीम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एक तो जवाब आया है कि बा में हो रहा है दूसरा इसके साथ भी काफ़ी लोगों ने लिखा है कि द टूर्नमेंट विल बी वन बाय बा और स्टीवन है आपकी बेटी है तानिया एंड वाइफ कोमल सपोर्टिंग द बा सोका टीम कीप द ट्रॉफी कमिंग नेक्स्ट संडे इन बा एंड द मार्चिंग फॉलोज ऑन संडे नाइट यार आपने तो एकदम से ये पेन डाउन कर दिया है कि बा ट्रॉफी लेकर आने वाली है और उसके बाद में सेलिब्रेशंस भी संडे नाइट को होने वाले हैं वाओ नाइस थैंक यू स्टीवन आपके मैसेज के लिए एंड ऑल्सो अभिकाश है आपने भी कहा है द मैन इन ब्लैक्स विल विन एट द होम ग्राउंड तो भाई अगर बाकी आप सपोर्टर्स है ऑल द बेस्ट आपको और आज भी लास्ट मैच कल की तरह बा खेलने वाली है एंड फिलहाल जो मैच हो रहा है इस पर अपडेट्स हम थोड़ी देर में आपके लिए शामिल करेंगे ऑल्सो कमिंग अप इज़ द नेशनल प्रोविंशियल चैम्पियनशिप जिसमें थर्सडे को खेल हुआ तैरनाकी और ऑकलैंड के बीच में तैरनाकी ने ऑकलैंड को 28-12 से हराया है एंड कल हॉक्स बे ने ओटागो को 35-24 से हराया है आज कितने खेल होने वाले हैं इस पर जानकारी है बस थोड़ी देर में मैं हूं जिकाश रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

0: Radio Pub.
1: Battle of the Giants tournament ye jari hai Mba mein, Fiji mein, and filhal Nasinu aur Navwa ke band mein khel ho raha hai, and half time score Nasinu lead kar raha tha Navwa ko. Is par aur bhi updates hum aapke saath bhi share karenge. Navwa not having the best time in this tournament. Kal Suva ke haath inki haar hui, Suva 3 Navwa 1. Aur bhi kal matches hue hain जिसके बारे में अपडेट्स हमने डाले हैं फेसबुक पेज पर. डे वन में सुबह ने 3-1 से नवा को हराया. लंबासा ने नसीनू को 1-0 से पराजित किया है. रेवा ने लोटोका को 2-0 से हराया. एंड बा दे मैनेज टू गेट वन ओवर नांदी. बा 1-0. दैट वाज द लास्ट मैच फॉर यस्टरडे. दैट वाज डे वन. आज खेल जारी है नावा और नसीनू के बीच में. इसके बाद में 1:30 PM बस खेल शुरू होने वाला है लोटोका फुटबॉल और नांदी के बीच में. और 3:30 PM पर लंबासा और सुबह आमना सामना होंगी. एंड 5:30 पर बा और रेवा विल बी बैटलिंग इट आउट इन द लास्ट मैच फॉर डे टू. नवा और नसीनू के मध्य में जो खेल हो रहा है ये समाप्त होने वाला है. इस पर जानकारी बस आपके लिए हम थोड़ी देर में पेश करेंगे.

0: क्या करता मैं, कब तक भूखा मरता मैं, भगवान का बात मत कर, गरीब हूँ नहीं डरता मैं।
1: क्रेजी दिया तूने ये क्यों किया, काली पोकटगी जी में मुंह दे दिया।
2: इक्वस अफ्रीकानस असिनस मतलब कथा, कथे के जैसा मत।

0: अब अगर नेट जियो सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा. हॉन्ट क्या करेगा? हॉन्ट.
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: बजट गाने.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
1: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
2: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
4: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari good brands nahi hai.
5: Yo. Big Radio Pub.
7: Yeah. Radio Pub ka maza aap le rahe hain. 22 minute reh chuke hain. 2 bajne mein. Now, अच्छे दोस्त होना बहुत ही ज़रूरी है और वो दोस्त जो काम के हो तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं काम के लिए ही दोस्त बनाते हैं। क्या आप उनमें से एक है? आर यू समवन हु फील्स जस्ट यूज्ड बाय योर फ्रेंड्स? वेल, आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे दोस्त बनाएं जिनके पास नॉलेज हो और वो नॉलेज वो आपके साथ बांटे एंड आप अपनी नॉलेज भी उनके साथ में बांटे। क्यों मैं कह रहा हूँ, आई केम अक्रॉस अ रीसेंट ट्रांजैक्शन जहाँ पर किसी ने ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ही अच्छी सलाह दी अबाउट इन्वेस्टिंग, कि अगर आपके पास कैश पैसे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट कैश पैसा टू बाय समथिंग आउटराइट, इन्वेस्ट दैट इंटू अ टर्म डिपॉजिट जहाँ पर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयर्ड टू द इंटरेस्ट दैट यू विल पे फॉर द हायर परचेस। नाउ इफ़ यू आर इन द फाइनेंसिंग फील्ड, अकाउंटिंग फील्ड में है, देन यू नो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आप ऐसे कोई है जिनको ये इंटरेस्ट रेट्स, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल रेट्स समझ में नहीं आता है, तो आई एम प्रीटी श्योर आपके फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे ना ऐसे कोई एक व्यक्ति है हु नोज़ अबाउट अकाउंटिंग, हु नोज़ अबाउट फाइनेंस और इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं। मेक मनी वर्क फॉर यू। अगर आपने ढेर सारे पैसे बस पिगी बैंक में डाल कर रखे हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में डाल कर रखे हैं जहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, वेल यू आर लूजिंग मनी, या फिर इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन आपका पैसा, आपके पैसे का वैल्यू ये घट रहा है। तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, दोस्तों से बातें करें हु आर इन द अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड, या फिर देयर इज एन ऐप कॉल्ड शेयर्स। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने इसके बारे में सुना था, आई गॉट ऑन टू द ऐप, थोड़ी सी रिसर्च की एंड नाउ कुछ पैसे डाले हैं विच इज़ डूइंग मोर देन वट इट वुड हैव डन by just sitting in our bank accounts. तो Shares app हो गया, ऐसे कई सारे investing app है, Indus हो गया, अगर आप इंडिया से है तो Indus भी एक app है जिसे आप checkout करें। And कुछ भी कदम उठाने से पहले अपना research आप ज़रूर कर लें। अगर आपके contacts में financials है, financial team में काम करने वाले कोई भी लोग हैं, bankers है, they would be able to help you out।

0: listening to Chikash.
1: Playing Bollywood's biggest hits aur ek aur ek hit nagma aapke liye hum shamil karne ja rahe hain from the album by Bombay Rockers aur isse pehle aapko hum bata de about the match jo Giant Killers Nasinu aur Nava Football Club ke beech mein ho raha tha. Isme Nasinu have come out victorious 1-0 se Nava ko inhone parajit kar diya hai. To I can say ki bhai Nava might be the first team out of the tournament kyunki teen mein se do khel mein inke haar ho chuki hai and ab shayad bahut hi mushkil ho jayega. Now what they need is all the teams to lose all their matches jo shayad impossible hai. To now what team, better luck next time aapko hum kehna chahte hain. And dusra jo match shuru ho raha hai is par bhi updates hum aap tak pahunchate rahenge. Plus US Open tennis ye bhi jari hai. क्या आप इसे फॉलो करते हैं? इफ़ यू डू वांट टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर टेनिस प्लेयर जो खेल रहे हैं इसमें डू लेट मी नो 0800 004 866 पर, क्योंकि मेन्स सिंगल्स, वीमन सिंगल्स, मेन्स डबल्स, वीमन्स डबल्स और मिक्स डबल्स के मैचेस ये होते रहेंगे और कौन कौन से खिलाड़ी कब खेल रहे हैं, जीत हासिल की है या फिर हार का सामना किया है, ये सब जानकारियाँ थोड़ी देर में आप तक हम बारी बारी से पहुँचाते रहेंगे.

अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न रहना बहुत ही ज़रूरी है। एंड अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्थी हैं, इसका मतलब है कि आप अपना डाइट कंट्रोल में रख रहे हैं, यू आर गेटिंग द एडिक्वेट एक्सरसाइज और यू आर फीलिंग हेल्थी। लेकिन हाउ डज योर हेल्थ स्टैक अप इन कंपैरिजन टू द हेल्थ ऑफ द नेशन? वेल, अभी एक छोटा सा सर्वे किया गया है जहां पर 1480 न्यूजीलैंडर्स से कुछ बातें की गई हैं बाय द स्टफ टीम, एंड 67% के लोगों ने कहा है, 67% ऑफ द पीपल हैव सेड कि देयर हेल्थ इज़ गुड और बेटर, 2/3 ऑफ कीवीज फील गुड, वेरी गुड और एक्सलेंट अबाउट देयर हेल्थ, आर यू वन ऑफ देम? 56% फील कॉन्फिडेंट मैनेजिंग देयर हेल्थ। Over half of the people who were asked and surveyed, उनका कहना है कि they manage their health by themselves, ये कहीं पर किसी personal trainer को नहीं hire करते हैं, खुद ही manage करते हैं कि कितना exercise करते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। 70% have delayed health care in the past year. GP visit, क्या पिछले साल में आपने एक routine डॉक्टर विजिट किया है टू गेट अ फुल चेकअप ऑफ योर बॉडी, अ ब्लड चेकअप, आपका वेट आपके हाइट के अनुसार है या फिर आपका हाइट आपके वेट के अनुसार है, बॉडी मास इंडेक्स क्या ये सही है? हैव यू डन दैट? वेल, 70% हैव नॉट डन दैट। 44% फील स्ट्रेस्ड एंड ओवरवेल्ब्ड वीकली, नियरली हाफ अराउंड 1 in 5 फील इट डेली, स्ट्रेसफुल फील करते हैं। 47% गेट 6 or fewer hours ऑफ स्लीप, क्या आपका भी यही हाल है? सोने में कंजूसी आप करते हैं, 6 घंटे से कम आप प्रतिदिन नींद आपको मिलती है। एंड 89% ट्रस्ट देयर मेडिकल प्रोफेशनल्स इवन ए 63% स्टार्ट अ हेल्थ सर्च ऑन गूगल फर्स्ट। तो क्या आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं या फिर गूगल ही आपका डॉक्टर है, गूगल ही आपका बाबा है?

0: સાથેન ચિકાશ.
1: Yo.
0: Big Radio Pub.
2: दो बजकर दो मिनट हो चुके हैं एंड क्या आपने अभी ट्यून इन किया है. वेल देर आए दुरुस्त आए, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन रेडियो पब. मैं हूं जिकाश एंड जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना है अबाउट अ लॉट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स हैपनिंग इन ऑन आवर शोज़. ऐसे में इंडियन की दो टीमें आ रही हैं. वन इज़ द फुटबॉल टीम एंड द अदर इज़ द इंडियन क्रिकेट टीम ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवम्बर. तो ऐसे में ये खेल रही है हमारे दो टीम्स से, मतलब न्यूजीलैंड की ऑल ब्लैक्स, सॉरी नॉट ऑल ब्लैक्स, ब्लैक कैप्स और ऑल वाइट्स से. तो इस घंटे का सवाल आपसे हमारा ये है, आपको हमें बताना है कि न्यूजीलैंड की जो मेंस सोकर टीम है इनको क्या नाम दिया गया है. दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द इंडियन सोकर टीम और हमारी न्यूजीलैंड की मेंस सोकर टीम, आर दे द ऑल वाइट्स या फिर ब्लैक कैप्स. इनमें से कौन है जो हमारी न्यूजीलैंड की सोकर टीम है, इज़ इट द ऑल वाइट्स या फिर ब्लैक कैप्स. इसी सवाल के साथ में आइए शुरू करते हैं इस घंटे का सफ़र हियर ऑन हम रेडियो पब में. मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: वीकेंड आ जाता है तो दी मच नीडेड रेस्ट आप करना पसंद करते हैं, क्योंकि सप्ते भर आपने कड़ी मेहनत की है और वीकेंड में आराम आप करने की सोचते हैं. और काफ़ी लोग हैं जो पार्टीज़ करना पसंद करते हैं, और पार्टीज़ की बातें चले तो ड्रिंकिंग ये एक चीज़ है जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं. हाँ, किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बातें करें तो ओवर यूज़ और अब्यूज़ करना ये आपके लिए सेहत के लिए आपके सेहत के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है. ऐसे में ड्रिंकिंग इज़ राइट अप देयर. अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो इसका असर किस तरह से आपके बॉडी पर पड़ता है. डेली ड्रिंकर वर्सेस वीकेंड बिंजर, What your alcohol habit is doing to your body. तो ये एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम बातें करेंगे इस घंटे पर. लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि if you were a drinker, आप शराब पीते थे and you have become sober, तो आप हमें कॉल करें on 0800-004-866. आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्यों आपने शराब पीना छोड़ दिया है, why you have become sober, और इसका क्या अच्छा असर आपके जीवन पर हुआ है. ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने पीना छोड़ा है तो इसका अच्छा असर ही हुआ होगा, लेकिन क्यों आपने पीना छोड़ा है ये हम जानना चाहते हैं. देयर मे बी रेंज ऑफ रीजंस जिसके कारण से आपने शराब को एकदम से नो नेवा नाडा कह दिया है. तो अगर आप ऐसे कोई शख्स हैं जो सोबा हो चुके हैं, शायद अभी भी आपने शराब छोड़ी, या फिर कुछ समय हो चुका है आपने शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया है, हम आपसे बातें करना चाहते हैं. 0800-004-866 पर आप कॉल करें अगर बातें नहीं करना चाहते. इफ़ यू वांट टू सेंड अ मैसेज तो 5599 पर ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं कि आपने शराब पीना क्यों छोड़ा है. That is what I want to know on 0800-004-866 and आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या फिर 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं. डेली ड्रिंकर्स और वीकेंड बिंजर्स, क्या असर होता है आपके शरीर पर इसका, इस पर एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. एंड ऑल्सो सवाल हमने आपसे किया है अबाउट द ऑल वाइट्स एंड द ब्लैक कैप्स. ये दो टीमें खेल रही है, इंडियन दो टीम्स से सोका वाली टीम और इंडियन क्रिकेट टीम आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. कहां पर कौन से खेल होने वाले हैं इस पर भी अपडेट्स हम आपको देंगे. लेकिन आप हमें बताएं कि हमारी न्यूजीलैंड की मेंस सोका टीम, इज़ इट द ऑल वाइट्स या फिर ब्लैक कैप्स.

0: Radio Pump.
1: Alright, before we dive into this song, आप से हमने सवाल किया है कि हमारी न्यूजीलैंड की मेंस सोका टीम इनको क्या कहकर बुलाया जाता है, फिर द ऑफिशियल नेम इज इट ऑल वाइट्स या फिर ब्लैक कैप्स, अपना जवाब हमारे पास भेजते रहे. एंड इस गीत के बाद में हम आपको डिटेल्स आपके साथ में शेयर करेंगे अबाउट द मैचेस जो ऑल वाइट्स खेलने वाली है अगेंस्ट द इंडियन टीम एंड द मैचेस ब्लैक कैप्स खेलने वाली है अगेंस्ट द इंडियन टीम. तो कब कहां पर क्या मैचेस होने वाले हैं ये जानने के लिए हमारे साथ में आप जुड़े हैं. सवाल का जवाब भेजते रहे, ऑल वाइट्स या ब्लैक कैप्स, आउट ऑफ दीज टू हमारी सोका टीम को क्या नाम से बुलाया जाता है. उदित नारायण की बारी है इस बार हम पर. रेडियो पब में मैं जिकाश आपके साथ में हूँ.

0: 20 मिनट हो चुका है 2:00। मोना, थैंक यू फॉर योर कॉल। आपने सही जवाब दिया है फॉर आवर क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन ये है कि हमारी न्यूजीलैंड मेंस सोका टीम जो फीचर इन्होंने किया था इन दी वर्ल्ड कप दिस ईयर एज वेल, तो शायद कुछ हिंट अपने आपको हमने दे दिया है। आपको ये बताना है कि हमारी न्यूजीलैंड की सोका टीम, मेंस सोका टीम, इनको ऑल वाइट्स कहते हैं या फिर ब्लैक कैप्स कहते हैं। वैसे इंडिया की दोनों टीमें, दी फुटबॉल टीम एंड दी इंडियन क्रिकेट टीम, आर ग्रेसिंग आवर शोज इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवम्बर। T20 इंटरनेशनल फर्स्ट मैच होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में, जहां पर हमारी न्यूजीलैंड की टीम और इंडिया की टीम खेलने वाली है थर्सडे अक्टूबर 22nd। उसके बाद में अक्टूबर 24th को क्राइस्टचर्च में द थर्ड T20 इंटरनेशनल हैपनिंग ऑन अक्टूबर 27th इन वेलिंगटन। एंड अक्टूबर 30th को ईडन पार्क में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम खेलने वाली है। संडे 1st नवम्बर को विल बी द 5th T20 इंटरनेशनल मैच बिटवीन the New Zealand team and Indian team. I'm trying to not to say the name of the New Zealand team. और फिर इसके बाद में one day international series शुरू हो जाएगा from November 4th till November 15th between the two cricket teams, that is the Indian and New Zealand team. इसके साथ में soccer matches भी होंगे between the two nations and ये दोनों team खेलने वाली है। Game 1 12th November को Go Media Stadium में होगा between the Indian soccer team and New Zealand soccer team, and the second game is happening on the 15th of November at 1 New Zealand Stadium in Christchurch, 15th of November Sunday को India की football team और हमारी New Zealand की football men's team ये आमना सामना करने वाली है। तो हमारे New Zealand men's soccer team, is it the black caps or the all whites, ye aapko hame batana hai. Today is the international day for charity under the United Nations calendar. Aur charity ki baatein chale to aapko to malum hai ki Nepal mein jo floods aaye hue hain, iske liye paise jutaye ja rahe hain, appeal ki ja rahi hai kahan par kis tarah se aap donations kar sakte hain, iski jankari hum aapke saath mein share karenge bas thodi der mein.
1: We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me. Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: Samoa is on sale now at Flight Centre. Book a 5-night fly and stay holiday from $1,169 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
5: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
10: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
12: So, you've been thinking about adding a modular home to your property?
13: Yes, and Zelo sounds great, but I'd really like to see one in person.
12: Now you can. Come and walk through two

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इन्ना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: Radio Pub.
1: रेडियो पब में मैं जिका आशाप के साथ दे रहा हूँ। बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट ये सेकंड डे में प्रवेश कर चुका है। द सेकंड मैच हैपनिंग राइट नाउ बिटवीन लोटोका फुटबॉल क्लब एंड द थांगी मोदिया नांदी फुटबॉल क्लब। इसमें लोटोका फुटबॉल क्लब इज विनिंग बाय 1-0। तो और भी अपडेट्स इस पर हम आप तक पहुँचाते ही रहेंगे। वैसे द नेपाल फ्लड एमरजेंसी अपील के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपील कर रही है, डोनेशंस की मांग कर रही है ताकि तमाम लोगों तक ज़रूरतमंद सामान, खाने पीने की चीज़ें और मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई जाए ताकि कुछ राहत पहुंचाया जा सके उन लोगों को हु आर स्ट्रगलिंग विथ दिस कैलमिटी विथ द फ्लड्स जो विदाउट अनाउंसमेंट आ गया। तो इसमें न्यूजीलैंड रेड क्रॉस दे हैव लॉन्च्ड द नेपाल फ्लड इमरजेंसी अपील और it has launched an emergency appeal to support people affected by the devastating flash flooding in northern Nepal, where thousands of people may have been affected and some of the worst hit communities, they are still cut off from the mainland. Kaise hua? A glacial lake outburst flood originating from the Tibet border. This swept through the northern Nepal in the early hours of 26th of August, destroying and damaging homes and critical infrastructure. Iske kai sare videos aap dekh chuke hain. So if you are in the position to spare a few dollars jo aap donate kar sake, I think today is one of the best day to donate, kyunki today is the International Day of Charity, reaffirming the Universal Declaration of the Human Rights, which states that recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. To bhai थोड़ी सी दयालुता, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी आप दिखाएं एंड जितना भी हो सके $5, $10, $20 ये आप डोनेट कर सकते हैं एंड दैट विल गो अ लॉन्ग वे। थोड़ा थोड़ा करके अगर ढेर सारे लोग डोनेट करते हैं द टोटल अमाउंट विल हेल्प थाउजेंड्स जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड नॉट ओनली दी स्ट्रगलिंग पीपल जिनको जो अफेक्ट हुए हैं फ्लड से, दी ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स ऑन ग्राउंड जो एड कर रहे हैं इनको भी मदद पहुँचेगी टू सेव अ लाइफ। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर आफ्टर 7 days ऑफ बींग ट्रैप्ड दो लोगों को एक केव से निकाला गया है एंड थैंकफुली दे वर फाउंड अलाइव।

0: You're listening to Chikash.
1: ऑलराइट, जो सवाल हमने आपसे किया था, दी मेंस सोका टीम न्यूजीलैंड की, इनको ऑल वाइट्स कहते हैं, नॉट ब्लैक कैप्स. ब्लैक कैप्स आर दी हमारी क्रिकेट टीम. तो जितने भी लोगों ने जवाब दिया है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. हमने आपसे और भी कहा था कि अगर आप सोबर हो चुके हैं, इफ़ यू हैव क्विट अल्कोहल फॉर गुड रीजंस, क्यों आपने छोड़ा है और इसका क्या असर आपको इमिडिएटली दिखने लगा है, तो जवाब हमारे पास आप भेजते रहे 5599 पर. दे आर नो सही जवाब. अगर आप कॉल भी करना चाहे तो 0800-004-866 पर आप कॉल कर सकते हैं. वैसे एक रिसर्च किया गया है अबाउट द डेली ड्रिंकर्स एंड बिंज ड्रिंकर्स. वो लोग जो एंजॉय करते हैं इवन अ ग्लास ऑफ वाइन और टू विद देयर डिनर, उनको ये लगता है कि दे आर हेल्थियर देन दोज हु स्प्लर्ज एट द वीकेंड. लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डेली ड्रिंकिंग इज़ दैट यू मे नॉट रियलाइज हाउ मेनी यूनिट्स यू आर कंज्यूमिंग ओवर द वीक. जस्ट वन रेगुलर ग्लास ऑफ वाइन एवरी डे टेक्स यू ओवर द वीकली लिमिट. अब वीकली लिमिट क्या है? वेल, द ऑफिशियल लो रिस्क गाइडलाइन रिकमेंड लिमिटिंग अल्कोहल टू 10 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ वीक, दैट इज़ फॉर वीमन, एंड 15 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स फॉर मैन. लेकिन यहाँ पर यह बात भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नो लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इज़ कम्प्लीटली विदाउट रिस्क. अगर आप एक पाइंट भी पीते हैं इन अ वीक, वेल देट इज़ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ हार्म टू योर बॉडी. क्योंकि जब आप शराब पीते हैं, योर लिवर प्रायोरिटाइजेज ब्रेकिंग डाउन एंड डाइजेस्टिंग अल्कोहल, और ये अपना सब काम छोड़कर फ्रॉम डाइजेस्टिंग फैट्स, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड टॉक्सिन्स, ये सब छोड़कर लीवा लग जाती है अल्कोहल को आपके सिस्टम में से निकालने के लिए. तो क्या कितना आप पीते हैं ये देखना ज़रूरी है या नहीं? वेल, इफ़ यू आर अ डेली ड्रिंकर, तो आपको हम बता दें कि द कैंसर रिस्क इंक्रीजेज फ्रॉम द फर्स्ट ड्रिंक, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस टू शो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट रादर देन द पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग. 2026 में एक रिव्यू हुआ था of studies looking at 3.9 million people, और यहाँ पर यह बात पता चली कि even little and light drinking caused a modest increase in cancer risk, while sustained, मतलब regular drinking, regular alcohol consumption produced substantially larger risks, particularly for gastrointestinal and breast cancer. वहीं पर अगर आप weekend binger है and you drink 8 to 10 units in one sitting, the guidelines around binge drinking may surprise you. Binging is classified as more than 6 units of alcohol for women and more than 8 units of alcohol for men. Roughly 2 250 ml glasses or 13% alcohol wine. That is 6 units. तो अगर आप 250 ml of wine पीते हैं, 2 glasses पीते हैं, that's 6 units, और roughly 4 pints or standard lager. There is 8 units for men. तो भाई, स्टडी हुआ था पब्लिश बाय द अल्जाइमर्स यूके, फाउंड दैट रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड, जस्ट वन इंस्टेंस ऑफ अल्कोहल इंड्यूस्ड लैक ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस 12 मंथ्स वॉज एसोसिएटेड विद ट्वाइस द रिस्क ऑफ डिमेंशिया कंपेयर्ड विद मॉडरेट ड्रिंकर्स हु डिडंट रिपोर्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस. तो कितना पीते हैं आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको कंट्रोल में करना. एंड अगर आपने क्विट कर दिया है, वेल देयर इज नथिंग बेटर देन क्विटिंग अल्कोहल. अगर आप पीते थे, अगर आपने छोड़ दिया है, ब्रावो, कुदोस टू यू.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: What day is Father's Day? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
4: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: हाँ. अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट फोकस किचन.co.nz.
9: Yo. Radio Pub.

आपकी पर्सनालिटी ये डिसाइड करती है कि किस तरह के स्पोर्ट्स आप देखें, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है कि द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स दैट यू वॉच डिटरमिन्स या फिर रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। तो कल है फादर्स डे, दैट इज द 6th of September, एंड द फर्स्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर इज वेन फादर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि आपके डैड व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट डज ही इंडल्ज इनटू। इज योर डैड अ क्रिकेट डैड, इज योर डैड अ ट्रायथलोन डैड, जिनको दौड़ना भागना या फिर ऐसे ट्रायथलोन टूर्नामेंट्स को देखना पसंद करते हैं, ओ इज योर डैड अ रग्बी और सॉकर डैड, क्या आपके डैड गोल्फ खेलते हैं, इज योर डैड अ गोल्फ डैड, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। 5599 पर आप मैसेज करें अपना नाम, अपने पापा को आप विश करें हैप्पी फादर्स डे, मेक श्योर कि ही इज़ लिसनिंग। अगर न्यूजीलैंड में है, ऑकलैंड के आसपास है, तो ऑफकोर्स 104.2 FM, या फिर अपने डैड को बताएं कि ही गेट्स रोवा डाउनलोडेड ऑन हिज फोन और ही कैन लिसन टू अस व्हाइल वी डिसाइफर हिज पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट ही इंडल्जेस इन। तो इज योर डैड अ गोल्फ डैड, अ सॉकर डैड, अ रग्बी डैड, फील्ड्स ट्रायथलोन रनिंग डैड, या फिर आपके डैड पसंद करते हैं बेसबॉल या क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल देखते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ डैड डू यू हैव इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट। 5599 पर अपना नाम, अपने डैड को हैप्पी फादर्स डे विश करें, एंड मेक श्योर बोथ ऑफ यू आर लिसनिंग टू अस थ्रू रोवा। कुछ पर्सनैलिटीज़ को हम डिसाइफर करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट योर डैड वॉचेज।

0: रेडियो पॉप। रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.

Hey Kira, welcome back to हम जहाँ पर रेडियो पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. इस घंटे पर हम बातें करेंगे अबाउट डैड्स पर्सनैलिटीज बेस्ड ऑन द स्पोर्ट दैट ही लाइक्स और इंडल्जेस इन. तो मैसेज हमारे पास भेजते रहे, आपके डैड क्या स्पोर्ट देखना या फिर खेलना पसंद करते हैं. इज़ इट सोका, इज़ इट रग्बी और इज़ इट क्रिकेट, या फिर कई सारे लोग हैं जो गोल्फ भी सीखने लगे हैं, खेलने लगे हैं. तो ये स्पोर्ट क्या बताता है अबाउट योर डैड्स पर्सनालिटी. तो अपना जवाब हमारे पास भेजे कि आपके डैड कौन से स्पोर्ट को देखना या फिर खेलना पसंद करते हैं. 5599 पर अपना मैसेज भेजे. इस घंटे पर फादर्स डे के लिए हम एक प्यारा सा गाना भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं. तो गेट योर मैसेजेस इन, गेट योर डेडिकेशंस इन, एंड वी विल डू अ बिग शाउट आउट फॉर यू एंड योर डैड for this Father's Day happening tomorrow. मैं हूँ जिकाश, रेडियो पब में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ.

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: राइट ऋत्विक, आपका मैसेज हमारे पास आया है एंड यू सेड कि आपके डैड सोका देखना बहुत पसंद करते हैं। तो बेस्ड ऑन सम रिसर्च कुछ हमारे पास डिटेल्स आए हुए हैं। फुटबॉल एंड दिस इंक्लूड्स रग्बी और सोका। आपके डैड बहुत ही लाउड, पैशनेट और कम्युनिटी ड्रिवन है। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो अ डैड हु लव्स फुटबॉल, सोका या रग्बी, दिस डैड लव्स ट्राइबल लॉयल्टी। हाँ, ये बात तो ज़रूर है क्योंकि इनका एक फेवरेट टीम होता है, चाहे वो हारे या जीते इनको हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। तो डैड्स हु लव रग्बी और सोका, दे हैव ए ट्राइबल लॉयल्टी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ही थ्राइव्स इन ग्रुप्स एंड व्यूज द वीकेंड गेम एज अ सेक्रेड सोशल रिचुअल। ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, एक्सपीरियंसेस हाई हाइज एंड लो लोज with his team and values teamwork and toughness above all. Does this resonate with your dad, Ridvik? Do let me know. And agar aapke dad koi aur sport ko khelte hain, dekhte hain ya support karte hain, do let me know. Uske aadhar par unki personality hum understand karne ki koshish karenge. Shayad aapne bhi kabhi notice nahi kiya hai ya phir notice kiya hai lekin pata nahi chalta hai ki aapke dad ki personality जैसी है वैसी क्यों है। शायद इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैचेस, बाय द स्पोर्ट्स दैट ही फॉलोज। तो आपके डैड कौन से स्पोर्टिंग डैड है? रग्बी, सोका, गोल्फ, रनिंग, बेसबॉल, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल आपके डैड पसंद करते हैं? शायद ही इज़ अ फैन ऑफ, कोई मिल गया। इफ यू नो यू नो।

0: एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट जो जारी है बामे फिजी में, इसमें खेल हो रहा है बिटवीन लोतोका एंड तंगीमौदिया नांदी फुटबॉल क्लब एंड लोतोका फुटबॉल क्लब. द केल्विन इंजीनियरिंग लोतोका फुटबॉल क्लब इज नाउ विनिंग बाय 2-0.
1: हम पर आपके साथ हैं त्रिकाश.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
6: What day is Father's Day? Sunday! And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: बीस मिनट हो रहे हैं 3:00 रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। हमने पूछा है आपसे अबाउट योर डैड्स फेवरेट स्पोर्ट जो वो देखते नहीं थकते हैं या फिर ही इज़ वेरी गुड एट इट या फिर सीख रहे हैं। एंड विनय आपने कहा है आपके डैड रंजय ही हैज़ पिक्ड अप गोल्फ खेलना शुरू किया है इन्होंने, तो शायद इनके दोस्तों ने इनको बताया होगा, पूछा होगा, या फिर ही हैज़ यू नो डेवलप्ड some sort of interest in golf. तो golf के बारे में अगर हम देखें, अगर आपके डैड golf खेलते हैं या देखते हैं तो किस तरह की personality उनकी है या फिर हो सकती है। golf dads इनकी vibe के बारे में बताया गया है कि they are patient, quiet and deeply philosophical. This dad values peace, quiet and routine. He processes stress by walking through nature and swinging a club. He treats family life like an 18-hole game. It requires long-term strategy, emotional control and the ability to forgive a bad shot. कितनी बढ़िया तरीके से golf को और family को साथ में इस article ने जोड़ा है। तो if your dad is a golf dad, he is patient, he is quiet and deeply philosophical. I know some people who play golf who are not patient, who aren't quiet and who aren't philosophical at all. And this goes out to Ronil in Pocono. आपको हम शामिल कर रहे हैं इस अगले गीत में। कल आपका जन्मदिन था, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू। बहुत सारा प्यार आपको मिला है, आपकी प्यारी सी बेटी है मायरा एंड लविंग वाइफ सलेशनी की ओर से आपको ढेर सारा प्यार मिला है। आपके मम एंड डैड फ्रॉम सिंगादोका, इन्होंने आपको ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। हमारी ओर से भी आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे।

0: overall male health. So do go and check it out. Shayad this can be a tool jisko use karke aap apne health ko monitor kar sakte hain aur koi badi bimari aane se pehle hi usko aap tackle kar sakte hain. bodyiq.co.nz aap check out kare.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my
3: I
2: fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Morning.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: What day is Father's Day? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Bunnings has great value to help make spring cleaning easy with all-set 20-pack of microfiber cleaning cloths, only $10.98, and the Pink Stuff 850-gram Miracle Cleaning Paste, just $9.49. Head in-store or online for even more great value this spring. Bunnings
5: Warehouse! Yo!
1: Radio Pub.
6: एनपीसी के अंतर्गत बेफ प्लेंटी और मनवातो के बीच में खेल हो रहा है. इसमें मनवातो की जीत हो रही है ओवर बेफ प्लेंटी बाय 29 पॉइंट्स टू 12. सेकंड हिस्से का खेल अभी फिलहाल जारी है. नाउ समटाइम्स जब मेरे पास वक्त रहता है तो वर्ड्स को अलग अलग भाषाओं में क्या कहते हैं. मान लिया जाए पोटैटो, इसको आलू कहा जाता है हिंदी में, फिर अलग अलग भाषाओं में क्या कुछ कहा जाता है. आई ट्राई टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उसको मैं जानना चाहता हूँ. एंड ये एक चीज़ है जो अगला वेजिटेबल है, इसको फिजियन भाषा, अगर आप फिजी से हैं तो इसके बारे में आप शायद जानते होंगे. द फिजियन वर्ड फॉर दिस वेजिटेबल इज पतेता कमी कमीदा. पतेता कमी कमीदा. एंड हिंदी में इंडिया से अगर आप हैं तो शकरकंद, आपको शकरकंद या फिर फिजियन में पतेता कमी कमीदा. हमें ये बताना है कि टेरियो माउरी में शकरकंद को क्या कहते हैं. 5599 पर अपने नाम के साथ अपना जवाब भेजिए. डू लेट मी नो कि आप किस इलाके से हमें सुन रहे हैं. इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी थ्रू रोवा, आप रोवा भी लिख कर भेजें, तब मुझे पता लगेगा कि कितने लोग रोवा से हमें सुन रहे हैं. पतेता कमी कमीदा या फिर शकरकंद, इसका थेरियो माउरी शब्द क्या है. 5599 पर आप जवाब दें.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन
2: ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਏਰੀਏ ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: It's 7 minutes after 4. मैं हूँ जिकाश. रेडियो पब का सिलसिला जारी है right till 6 PM. If you have just joined, आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप? सैटरडे है. वेदर, इट हैज टेकन अ बिट ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम द विंडी एंड वेट वीकेंड वीकडे दैट वी हैड लास्ट वीक. सोमवार से शुक्रवार तक आई हैव बीन आउट एंड अबाउट और बारिश और तेज़ हवाएं, इसका सामना करना पड़ा हम सभी को. और बेवक्त विदाउट नोटिस बारिश हो रही थी, तो ऐसे में सम पीपल वेर कॉट आउट विदाउट देयर अम्ब्रेलास. तो क्या ऐसा ही वेदर नेक्स्ट वीक होने वाला है? वेल, इसके बारे में हम आपको तो बताएंगे ही, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया वेदर है. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. गो बी आउट एंड अबाउट, दोस्तों से मिले, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट वाइल यू कैन, वाइल कीपिंग मी विथ यू. जेब में फ़ोन है, फ़ोन में ऐप है, ऐप का नाम है रोवा. एंड रोवा को आपको बस डाउनलोड नहीं करना है, इसको चालू करके रखना है ताकि आपको पता लगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, हमें पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं. तो लेट्स गेट टुगेदर एंड मेक दिस सैटरडे अ हैपनिंग वन. वैसे सैटरडे तो बढ़िया है ही, कल संडे और भी बढ़िया होने वाला है क्योंकि द ग्रेटेस्ट राइवलरी सीरीज इट्स गोइंग टू गो इन टू इट्स थर्ड लेग, जहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हु आर लॉक्ड इन एट वन ईच, एक एक दो गेम्स खेले हैं, एक ऑल ब्लैक्स ने जीता है, एक साउथ अफ्रीका ने जीता है. कल क्या विल इट बी दी डिसाइडर फॉर अस? इसका गेम प्रीव्यू शुरू हो जाएगा कल सुबह तकरीबन 2 से और फिर 3 पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमना सामना करने वाले हैं. इसके बाद दी फोर्थ मैच बिटवीन द टू टीम्स विल बी हैपनिंग ऑन द 13th of September. और 13th of September के बारे में बढ़िया बात यह है कि 13th September को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है, नॉट एट 3 AM बट एट 9 AM. आइए एंजॉय करते हैं दिस ऑसम सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर 2. सवाल हमने आपसे किया है कि पतेता खमी खमी दा या फिर शकरकंद, इसको ठेरियो माउरी में हम क्या कहते हैं? ऑल ईयर राउंड हमारे सुपर मार्केट्स में ये वेजिटेबल मिलता है एंड सम पीपल फाइंड दैट इट इज़ अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट फॉर आलू, स्वीट पोटैटो. इसको ठेरियो माउरी में क्या कहते हैं? भाई यहाँ पर है तो यहाँ के चीज़ों के बारे में जानना, यहाँ के नामों के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है. नहीं जानते हैं तो गूगल करें या फिर अपने सुपरमार्केट्स में जाएं, वहाँ पर शकरकंद रखा होगा, उसके आसपास उसका नाम ज़रूर लिखा होगा.

0: भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Showerdome.co.nz.
3: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: The all-new Mazda CX-5 is big on the road ahead. With 5 years of Mazda care included, it's big on servicing, big on warranty, big on roadside assistance, and big on peace of mind. Mazda.
5: Zoom, zoom.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
7: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
12: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
13: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
12: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
14: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
12: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
15: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
16: Indelible Homes, your building expert.

0: Radio Pub.
1: चौबीस मिनट हो रहे हैं 4:04। मैं हूं जिकाश, आपका साथ देता चल रहा हूं इन रेडियो पब। आज है दी 5th of September। ऐसे में अगर आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको हम विश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि अभी तक आपका दिन बहुत ही बढ़िया गया है, आपकी रात और भी सुहानी होने वाली है। एंड होप यू गेट द गिफ्ट्स दैट यू डिज़र्व, यू गेट ऑल द लव दैट यू डिज़र्व, और आपको आज अपने और अपने का प्यार बेशुमार मिले। हमारी ओर से यही प्रार्थना है, ऊपर वाले से यही दुआ है, यही प्रेयर है कि आने वाला साल, आने वाले जितने भी दिन हैं, इसमें आपको खुशियाँ मिलती रहे, एक सेहतमंद और खुशहाल जीवन जिंदगी आप जी। आप वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम विश कर रहे हैं। सवाल हमने किया था आपसे अबाउट पतेता कमी कमी दा, मतलब शकरकंद, मतलब कुमाला फिजी में कहते हैं, एंड कुमरा यहाँ न्यूजीलैंड में टेरियो माओरी भाषा में कहा जाता है। अब कुमरा कुमाला से हुआ या फिर कुमाला कुमरा से हुआ, ये तो भाई शायद ही कोई जानता होगा। एनीवेज, जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया था, आप सभी के नामों को हमने आप सभी के नाम ये अगला गीत हम कर रहे हैं, ग्रेट ट्रैक फ्रॉम एड शीरन। इसके बाद में इस घंटे पर हम आपके लिए शामिल करने जा रहे हैं फादर्स डे गीत। तो इसके लिए क्या आप तैयार है? बस तैयारी आपको उतनी ही करनी है कि अपने डैड का नाम, इनके नाम एक शाउट आउट भेजें, क्यों आपके लिए खास है, ये आपके साथ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपसे दूर है तो मेक श्योर यू मेक देम फील स्पेशल बाय ड्रॉपिंग देम अ कॉल। प्यारा सा तोहफा इनके इनको आप पहुँचाए, या अगर आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो आपके लाइफ में दूसरा फादर फिगर कौन है, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा।

0: ऑलराइट, तो एक डायलॉग है बिटवीन टू वेरी प्रोमिनेंट बॉलीवुड एक्टर्स, शायद जेंजीज इनके बारे में नहीं ही जानते होंगे, तो इफ यू आर अ जेंजी सुने इस डायलॉग को और ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सी आवाज़ को आप पहचान सकते हैं। दो एक्टर्स हैं जिनको बहुत से लोग प्यार करते हैं फ्रॉम बॉलीवुड, और एक हमारे बीच में नहीं है, एक अभी भी है, तो इन दोनों की एक्टिंग को बहुत ही सराहा गया है। आप सुने और किसी भी एक एक्टर का नाम हमारे पास भेजें, भेजते हुए अपना नाम और अपने डेट का नाम भी आप भेजिए, प्यारा सा मैसेज भी अपने डेट के लिए आप भेज सकते हैं व्हाइल यू आर गिविंग मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5599 पर आप बताएं कि इन दोनों में से किसी एक की आवाज़ को पहचान कर नाम आपको हमारे पास भेजना है।
1: आपको अपने जरूर मिल जाएंगे बाबा।
2: हाँ बेटे, तेरी बात और मेरी ढारस बहुत बधाई है, लेकिन फिर भी न जाने डर क्यों लगता है।
1: नहीं बाबा नहीं, जब तक आपका यह डर खत्म ना हो जाए ना, तब तक आप यहीं रहेंगे, इसी बस्ती में रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे।
2: नहीं बेटे नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता
1: बाबा। आपने मुझे बेटा कहा है ना, बाप बेटे पे कभी बोझ बनता है क्या? मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आप इनकार नहीं कर सकते, आपको मेरी कसम।
2: नहीं नहीं नहीं बेटे नहीं।
0: इन दोनों में से किसी एक एक्टर का नाम आपको हमारे पास भेजना है विथ योर नेम एंड डूइंग अ शाउट आउट टू योर डैड थ्रू योर मैसेज। 5599 पर जवाब भेजे। दोबारा आपके लिए ये हम बजा रहे हैं।
1: वक्त हर चीज को मिला देता है, देखो ना, सूरज भी शाम को समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह से एक दिन आपको अपने जरूर मिल जाएंगे बाबा।
2: हाँ बेटे, तेरी बात और मेरी ढारस बहुत बधाई है, लेकिन फिर भी जाने डर क्यों लगता है।
1: नहीं बाबा नहीं, जब तक आपका यह डर खत्म ना हो जाए ना, तब तक आप यहीं रहेंगे, इसी बस्ती में रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे।
2: नहीं बेटे नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता
1: बाबा। आपने मुझे बेटा कहा है ना, बाप बेटे पे कभी बोझ बनता है क्या?
0: राइट, इन दोनों में से किसी एक का नाम आपको पहचान कर हमारे पास आवाज पहचान कर नाम हमारे पास भेजना है 5599 पर।

0: Radio Pub.
1: डायलॉग हमने आपके लिए प्ले किया था, उसके डायलॉग में जो एक्टर्स थे उनका नाम पहचानना हमने आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा था. एंड आई चैलेंज जेंजीज, एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि जेंजीज में किसी को पता है कि डायलॉग्स किन की आवाज़ में रही है. दोबारा आपके लिए ये डायलॉग हम प्ले कर रहे हैं, इसे आप सुने एंड ट्राई टू फिगर आउट कि किन की आवाज़ें आप सुन रहे हैं. हो सके तो अपने बाप को आप बुलाएं और उनसे पूछे, शायद उनको मालूम होगा. इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस एंड डू गिव अ शाउट आउट टू योर डैड फॉर ऑल दैट इज़ दैट ही हैज़ डन एंड इज़ डूइंग फॉर यू व्हाइल यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ. तो सुने इस डायलॉग को और पहचाने किन दो एक्टर्स की आवाज़, किसी भी एक का नाम हमारे पास आप भेजें.
2: बाबा, वक्त हर चीज़ को मिला देता है. देखो ना, सूरज भी शाम को समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह से एक दिन आपको अपने ज़रूर मिल जाएंगे बाबा.
3: हाँ बेटे, तेरी बात और मेरी ढारस बहुत बधाई है, लेकिन फिर भी न जाने डर क्यों लगता है.
2: नहीं बाबा नहीं, जब तक आपका ये डर खत्म ना हो जाए ना, तब तक आप यहीं रहेंगे, इसी बस्ती में रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे.
3: नहीं बेटे नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता
2: बाबा. आपने मुझे बेटा कहा है ना.
1: इनमें से किसी भी एक आर्टिस्ट का नाम, कलाकार का नाम हमारे पास आप भेजे टुगेदर विथ योर नेम. अमित, थैंक यू, आपका मैसेज हमें मिला है. गुलविंदर सिंधु जी, आपने हैप्पी फादर्स डे कहा है आपके डैड है अवतार सिंह को, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड आकाश दीप जोशी, आपका भी मैसेज हमें मिल चुका है. वैसे बैटल ऑफ द जाइंस टूर्नामेंट फिजी में जारी है, नंबर 3 मैच ऑफ डे 2. दिस हैज गोन इन to half-time stage and Global Care Suva Football Club. ये अभी हरा रही है लंबासा को by 1-0 as both teams have gone into the half-time break at Govind Park in Mba.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे ओनली ऑन हम
8: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: Zero
10: with an X.
11: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search X-E-R-O today.
12: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5 litre bottle of fizzy drink and a garlic bread on the side. Is that all?
13: Yes, that's all, thanks. But whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
12: Okay, sorry.
13: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
12: Oh, man.
14: What day is Father's Day? Sunday! And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
15: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
16: Flooring Extra. Adore your floor.
17: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
18: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
19: Hum.
20: Yo.
0: Radio Pub.
21: Hey, kia ora and welcome back to Radio Pub. Jahan par main Jikash aapka saath de raha hoon. Ek minute ho chuka hai, 5 bajkar. Kya kar rahe hain aap? क्या आप तैयारियां कर रहे हैं फॉर द बिग रिवील फॉर टुमारो फादर्स डे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर द बिग लंच जो आप होस्ट करने वाले हैं या फिर आप अपने डेट को सरप्राइज़ करने वाले हैं वेल मेक श्योर कि जब आप सरप्राइज़ करने जाए आपके डेट जहां पर होने चाहिए वहीं पर हो ऐसा नहीं हो कि आपकी कोई सिबलिंग है और वो आपके डेट को चुरा ले गया है फॉर द डे तो मेक श्योर यू प्लान इट आउट प्रॉपरली ताकि एक साथ होकर यू गिव लॉट्स ऑफ लव टू योर डैड एंड हाँ मुझे मालूम है मैंने कहा था कि पिछले घंटे पर मैं बजाऊंगा एक प्यारा सा फादर्स डे गीत तो निकल गया समय ऐसा करते हैं अभी ब्रेक से पहले हम आपके लिए फादर्स डे गीत बजाएंगे तो ढेर सारे मैसेज भेजे अपने पापा के लिए और आई विल बी डूइंग अ बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो मेक श्योर यू गेट योर डैड ऑन बोर्ड और उनको आप सुनवाएं कि वो कितने खास है आपके लिए थ्रू द सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले. एंड प्यारा सा मैसेज अपने पापा के लिए आप हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर. नीलेश जी को हैप्पी फादर्स डे कहा है विनीत ने. थैंक यू विनीत. किसी ने कहा है प्राइस दो. कौन है भाई, क्या प्राइस चाहते हैं. एनीवेज, जो सवाल हमने आपसे किया था, धर्मेंद्र एंड शत्रुघ्न सिन्हा, दीज वर द टू एक्टर्स जिनकी आवाज़ें शामिल थी उस डायलॉग में. लेकिन अभी के लिए फटाफट आप अपने नाम के साथ में अपने डेट का नाम और उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज भेजें. आप सभी को हम शामिल करने जा रहे हैं एक प्यारे से फादर्स डे सॉन्ग में बस थोड़ी ही देर में.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: एनपीसी में जो खेल हो रहा था बिटवीन बे ऑफ प्लेंटी एंड मनवातु, ये ख़त्म हो चुका है. मनवातु हैव वन द मैच बाय 29 points to 12. अभी भी खेल शुरू हुआ है, फर्स्ट हाफ का खेल, और बिटवीन टेस्मन एंड वेलिंगटन दोनों टीमें नील ऑल से बराबर है. तो इस गीत के बाद में आपके लिए हम फादर्स डे सॉन्ग शामिल करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप अपने लिए डेट के लिए एक प्यारा सा मैसेज भेजिए और उनको टैग करें या फिर उनका नाम हमारे पास भेजिए अपने नाम के साथ में 5599 पर. 2-3 मिनटों का समय आपको हम दे रहे हैं, फटाफट अपने डेट के लिए मैसेज हमारे पास आप भेजें.

Yo. Big Radio Pub. रेडियो पब में समय हुआ है आपके लिए हम फादर्स डे गीत शामिल करें इन द प्रिपरेशन फॉर द मेगा सेलिब्रेशन ऑफ फादर्स डे टुमारो, जहां पर आप भी तैयार कर रहे हैं, आपके लिए शायद तैयारियां हो रही हैं। इफ़ यू आर अ डैड, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम डैड, अगर इसी साल आपके घर पर एक छोटा सा मेहमान आया है तो ऑल द बेस्ट फॉर यू जर्नी ऑफ बींग अ पापा, ऑफ बींग अ डैड। आपको हम बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं। मोहित शर्मा, आपने इतना ही लिखा है, आई लव यू डैड, एंड दैट इन इट सेल्फ मीन्स द होल वर्ल्ड फॉर योर डैड। थैंक यू मोहित शर्मा आपके मैसेज के लिए। विनीत, आपने अपने पापा को हैप्पी फादर्स डे विश किया है, एंड ईश्वर जी हैं इन ओटाहू, आपके बच्चों ने आपको भी हैप्पी फादर्स डे विश किया है। प्लस योगेश जी हैं पापाटोटो में, आपके बेटे हैं शिवी, इनकी ओर से आपको हैप्पी फादर्स डे विश किया जा रहा है। और मायरा है, अपने पापा नादन को आप हैप्पी फादर्स डे विश कर रही है। अमायरा है, आप अपने पापा अश्मित को भी हैप्पी फादर्स डे विश कर रही है। और इधर अनुराग कुमार, अपने पापा सलेश को हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू डैड आप कह रहे हैं, फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज़ डन फॉर यू ऑल दिस वाइल। तो आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं। इससे पहले एक शायरी या फिर एक पोएट्री है, किसी ने हमें इसमें टैग किया है, और ये पोएट्री इज़ अबाउट बेटी एंड बाबा। तो लिखते हैं कि मुझे इतना प्यार ना दो बाबा, कल जाने मुझे नसीब ना हो, ये जो माथा चूमा करते हो, कल इस पर शिकन अजीब ना हो, मैं जब भी रोती हूँ बाबा, तुम आंसू पोछा करते हो, मुझे इतनी दूर ना छोड़ आना, मैं रोऊं और तुम करीब ना हो, मेरा नाज उठाते हो बाबा, मुझे लाड लुटाते हो बाबा, मेरी छोटी छोटी कशिश पर तुम जान लुटाते हो बाबा, कल ऐसा हो एक नगरी में, मैं तन्हा तुमको याद करूं और रो रो कर फरियाद करूं, ऐ अल्लाह मेरा बाबा सा कोई प्यार जताने वाला हो, मेरे नाज उठाने वाला हो मेरे बाबा, मुझसे अहद करो, मुझे तुम छुपा कर रखोगे, दुनिया की जालिम नज़रों से मुझे तुम छुपा कर रखोगे। Happy Father's Day to everyone.

रेडियो पब का मजा ले रहे हैं आप। 25 मिनट हो चुके हैं 5 बजकर, मैं हूं जिकाश। इफ यू जस्ट ज्वाइंड, आपका स्वागत हम कर रहे हैं ऑन द एयरवेव्स ऑफ 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा। रोवा पर अगर आप मजा ले रहे हैं तो भाई डू लेट मी नो कहां पर है आप और व्हाट्स हैपनिंग टुनाइट। सैटरडे है तो काफ़ी लोग आज अष्टमी के बाद रिलैक्स करने वाले हैं एंड आई एम नॉट गोना से मच मोर अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर अष्टमी। लेकिन जितने भी मंडलीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया है, आई होप आपकी पूजा, आपका जो प्रोजेक्ट था ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है एंड यू हैड सक्सेस विथ योर श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस। आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं। नाउ द लास्ट सॉन्ग, नॉट द लास्ट सॉन्ग, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द शो, आपको ये आवाज़ पहचानी है, बहुत ही बढ़िया ये आवाज़ है जो आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं द नेक्स्ट सॉन्ग एक्चुअली एंड बहुत ही लवली सिंगर ये है। 67 वर्ष की ये हो चुकी है और कुछ कैंडिड बातें हुई इनसे एक YouTube वीडियो में जो लिंक हम आपके साथ में शेयर करेंगे ऑन आवर फेसबुक पेज। ऑल्सो ऑन आवर फेसबुक पेज अभी मैंने शेयर किया है द कैंपेन्स बाय द डिफरेंट पार्टीज। आपको तो मालूम है November 7th इज डे फॉर द जनरल इलेक्शंस 2026। सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी ये आपके हाथों में है, लेकिन आप क्या डिसीजन लेते हैं इट शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैंपेन्स, द कैंपेन प्रोमिसेस, किस चीज़ों के बारे में अलग अलग पार्टीज विचार कर रही हैं ये आपके लिए फ़ायदे लाने वाली है या फिर आपके जेब को और भी खालीपन महसूस होगा इफ़ द गवर्नमेंट चेंजेस या फिर इफ़ द गवर्नमेंट स्टेज। तो ये सभी बातें आपको जहन में रखनी है और इसको लेकर

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: सुबह और लंबा सा के बीच में जो खेल हो रहा है, इट्स गोन इनटू द सेकंड हाफ और 60 मिनट्स का खेल खत्म हो चुका है, आधे घंटे का खेल बचा है एंड सुबह हैव एक्सटेंडेड देयर लीड. नाउ सुबह इज ऑन 2 goals वाइल लंबासा कुछ भी नहीं. सवाल हमने जो आपसे किया था, सिंगर का नाम आपको पहचाना था, शुभ मुगल वॉज द आंसर.
1: यू आर लिसनिंग टू चिकाश.

0: Alright, National Rugby League में खेल जारी है between the Warriors and Sea Eagles and Warriors are on track. 34 minutes का खेल खत्म हो चुका है. Warriors leading by 20 points to 12. Up the Waz.
1: हम पर आपके साथ हैं चिकाश. Playing Bollywood's biggest hit.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
2: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards rush.
3: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
4: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
3: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
4: Now that I like the sound of.
3: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
5: Nice.
6: And you talked me into creating this funny character.
5: Great.
6: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
5: Are you?
6: Yes.
5: Are you Bobby the Baker?
6: Yes.
5: What's that? What's that thing you do again?
6: Stop it.
5: You bring the mouth.
6: Stop it.
5: I'll bring the pie.
6: Stop it, please.
5: Okay.
6: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
5: So what's the problem?
6: My name's Bruce.
7: Advertise with MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
8: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
9: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग जो
10: रेडियो समय एकदम से भागता चला गया है एंड इट्स टाइम फॉर मी टू शूट ऑफ लेकिन इस जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको हम याद दिलाना चाहते हैं एशियन फैमिली सर्विसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अनाउंसमेंट तो अक्सर आप गौर से सुनिए इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है एट एशियन फैमिली सर्विसेज कॉल द एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 दैट इज 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट अगर आपको ऐसा लगता है यू नीड सम एडवाइस इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ या फिर कोई है जिनको शायद मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है कॉल द हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 इसके अलावा कुछ नया हम कर रहे हैं ट्रेंड मेकर्स इसके बारे में आपको तो हम बताते ही आ रहे हैं ये म्यूजिकल पॉडकास्ट है इट्स अ पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी वेयर एवरी सॉन्ग इज क्यूरेटेड अराउंड अ यूनिक थीम इन आवर ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुजबे फ्रॉम जॉनर्स द डिफाइंड एरर्स टू ट्रिब्यूट सेलिब्रेटिंग द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड चाहे वो आइकॉनिक सिंगर हो चाहे विजनरी कंपोजर्स हो पोएटिक लिरिसिस्ट हो या फिर अनफॉरगेटेबल एक्टर्स एक बहुत ही बढ़िया सा पॉडकास्ट म्यूजिकल पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया जा रहा है अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए और सोचते हैं कि लॉन्ग ड्राइव में क्या हम सुने तो वेल वीव गोट यू कवर्ड एक स्पेशली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है जो आपके मूड को सेट करेगा आपके एनर्जी को हाई रखेगा एंड विल मेक एवरी किलोमीटर ऑफ योर जर्नी मोर एन्जॉयबल TM ट्रेडमार्क ट्रेडमेकर्स TM लिखकर भेजिए 5599 पर या फिर रोवा पर ट्रेंड मेकर्स आप सर्च करें ये ऑसम सा क्यूरेटेड प्लेलिस्ट आप एन्जॉय करने वाले हैं एंड हम बोर्डिंग कॉल इसके बारे में तो आप जानते ही हैं बहुत समय नहीं बचा है ये ड्रॉ बहुत ही जल्द होने वाला है आपको बस इतना ही करना है मंडे टू फ्राइडे के बीच में सुबह 8 बजे बहुत ही आसान हमने किया है सुबह 8 बजे 11 बजे दिन में 1 बजे और 5 बजे हम बोर्डिंग कॉल हम अनाउंस करते हैं। जैसे ही आप इसको सुनते हैं रोवर पर जाए और बोर्डिंग कॉल कंपटीशन में आप बोर्ड नाउ BOERDNOW लिख कर सबमिट करें एंड जस्ट लाइक दैट यू विल बी द ड्रॉ टू विन टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलमन एयरलाइंस विद $1,000 स्पेंडिंग मनी। सोलमन एयरलाइंस जो 4 बार फ्लाई करती है इन द वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु। विजिट flysolmans.com। इसी के साथ में अब तो हमारा जाने का वक्त हो चुका है। याद रहे रोवा आप बजाते रहे हमें सुनते रहे और जितनी ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा ही फ़ायदे में आप रहने वाले हैं। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और हमारी यहाँ से कोशिश बरकरार रहेगी टू मेक आवर प्रोग्राम टू मेक आवर कॉन्टेंट मोर एन्जॉयबल मोर रिफ्रेशिंग एंड मोर एंगेजिंग। इसी के साथ मैं जिकाश यहाँ से निकलने की तैयारी अब करने लगा हूँ। मिलते हैं कल शाम 6 पर, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट and a lovely Saturday evening, and for tomorrow a very happy Father's Day. I hope aapne jo bhi plan kiya hai will make a more special and a more memorable day for you and your dad and your father figures out there. Aap sabhi ko a very happy Father's Day. Milte hai kal sham 6 par jahan par we will be celebrating more fathers tomorrow night with more entertainment and more lovely music in Sunday Night Melodies. Kia ora.

0: दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: Moisture और ventilation का problem लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो। बोली बस मेरा फोकस है।
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 13।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is a very acceleration.
2: Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
3: No matter what you're working on, Mitre 10 Mega Westgate or Henderson, aapke liye sab kuch aasan banata hai. Zabardast range, expert advice, everything you need under one roof. Plus earn air points every time you shop. T's and C's apply. Mitre 10 Mega Westgate and Henderson, helping you get it done right.
4: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

time I want full freedom.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
4: कभी भी कहीं भी. ये है सैटरडे बॉलीवुड बज़.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुनें।

Keskimu Krukartan. Keski Toro Hardy.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342, दैट्स 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: What day is Father's Day? Sunday. And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
3: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
4: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
5: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
4: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
6: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC.
0: DJ Mix only.

ओ भैणवा, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज, कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342, दैट्स 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन

0: लोशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: अच्छा
1: बताओ, तो अंडा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: The DJ Mix, only on

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years. Night Flight.

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवा।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
3: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर, मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
4: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया, बनाना है।
3: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
5: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Budget gaane

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.

0: जाने चाहिए थाईलैंड.
1: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
3: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम.
4: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह. कभी धूप कभी बादल. अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए. रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
5: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
4: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
6: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया, बनाना है.
4: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज.
7: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
9: हाँ, अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
9: मिसेस सिंह.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130050 और विजिट फोकस किचन.co.nz.

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्वी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Bajaye hit gaane.
3: Night flight on Hum.
5: Gokul ki raata chali,
6: o chali, o chali.
5: Gokul ki raata chali,
6: o chali, chali, chali.
5: Gokul ki ra.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन डॉट को डॉट Zed.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड। Playing Bollywood's

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
2: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
3: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
2: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
3: Now that I like the sound of.
2: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
4: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

गुड मॉर्निंग आप सुन रहे हम और मैं हूँ आरज़ू के साथ. आज है संडे, सितंबर की पहला संडे यानी कि फादर्स डे. सो अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द अमेजिंग इनक्रेडिबल फादर्स एंड फादर फिगर्स आउट देयर. यू गाइस आर द बेस्ट. और इफ़ यू फॉरगॉट कि आज फादर्स डे है, मेक श्योर आप अपनी फादर्स और फादर या फिर फादर फिगर को टेक्स्ट कीजिए, नॉट टेक्स्ट सॉरी कॉल कीजिए. And if they're here in New Zealand, make sure you meet them and give them a big hug. Yeah, and surprise kijiye. Or, you know, just wish them a very happy Father's Day. Aaj hamari show mein definitely dedications hone wali hai. Every hour we'll be doing a special dedication. So message me 5599 per with your text. And we'll try to play the song and play out the dedication for you.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरिज़ आपके साथ एंड इन रीसेंट एपिसोड ऑन अनफिल्टर्ड जो कि हमारी सैंडी रिस्पे की पॉडकास्ट वहां पे दे मेट विद अभी क्रिएटर अभी हु जॉइंड टू टॉक अबाउट हिज पाथ टू बिकमिंग वन ऑफ न्यूजीलैंड की रिकॉग्नाइजेबल वॉइसेस फॉर साउथ एशियन कम्युनिटी एंड दे डिस्कस्ड अबाउट द रियलिटीज ऑफ मूविंग टू अ न्यू कंट्री उसकी स्ट्रगल एंड ऑल्सो हाउ ही यूजेस कॉमेडी and you know to basically help and guide other people and teach practical tips for anyone who's moved to New Zealand or any new country and they also talk about how like content creation be a future ki bahut powerful business model hai. So if you'd love to listen to this text through drive to 5599 and I'll send you the link ya fir aap Spotify mein ya fir Rova mein search kar sakte ho Unfiltered with Sandy and Rizbe.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
5: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
6: Showerdome.co.nz.
7: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
8: Their masalas are gram fresh, in-house every single day.
7: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
8: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
7: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
1: Chill, sip, smile.
9: This is Sunday Breakfast.
10: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉल विद बिकॉज़ इट्स मैं हूं आरज़ब के साथ एंड आई लव टू नो कि व्हाट इज वन थिंग दैट योर पापा टॉट यू विदाउट एक्चुअली टीचिंग यू लेट मी नो टॉप फाइव डाउन नंबर

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजू आपके साथ एंड इफ आपने मेरी शो पहले भी सुना था देन यू माइट हैव एन आइडिया और यू माइट नो कि मैं नेपाल से हूं एंड अनफॉर्चुनेटली 26 अगस्त को टिबेट और नेपाल के बॉर्डर में एक बहुत सच अ हार्ट ब्रेकिंग डेविस्टेटिंग फ्लडिंग हैपन जिसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल की यू नो लाइक दे टुक द लाइव्स ऑफ that many people and thousands of people ki livelihood family members you know ghar sub

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम जबरदस्त हिट्स
2: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम आप सुन रहे हैं हम प्ले बॉलीवुड बिग हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ है। नेक्स्ट अप आई विल बी टेलिंग यू सम फन फ्री एक्टिविटीज टू डू विद द डैड टुडे, क्योंकि आज फादर्स डे ऑफ कोर्स, सो देयर आर सम फ्री वर्कशॉप्स गोइंग अराउंड इन द कंट्री, सो आई विल टेल यू मोर अबाउट इट नेक्स्ट।

0: is Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स सेट समय हो आरज़ू आपके साथ then when I started the show I did say कि आज फादर्स डे के स्पेशल के लिए हर like every hour there's gonna be in a time to do dedications so अब आज का है वो समय वहाँ जब हम dedications शुरू करने वाले हैं और अब ये मैसेज है प्रिया जी से अपने पापा के लिए और मैसेज है happy father's day papa thank you for always working hard आपकी मेहनत और सपोर्ट के बिना हम यहाँ नहीं होते थैंक यू फॉर बीइंग अ कांस्टेंट एंकर इन न्यूजीलैंड हैप्पी फादर्स डे पापा ये सॉन्ग आपके लिए

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Non-stop Bollywood.
1: With big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉल विद स्पीकर सेट समय हो आज आपके साथ. क्या आपको फ्री एयर टिकट्स टू वानुआतु चाहिए और उसके ऊपर $1,000 स्पेंडिंग मनी भी? यप, यू हर्ड दैट राइट. All you have to do is weekdays, Monday to Friday, say 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m., 5 p.m. May, you have to listen out for the special boarding call. Or uske baad, when you hear the call, you have 60 minutes to go to Rova, R-O-V-A. Wahan pe aapko type karni hai board now and click submit. And uske baad, you are in the draw to win an unforgettable Vanuatu getaway. Ji haan, easy. आपको वो लिंक चाहिए, देन टेक्स्ट BC 2559 एंड आई सेंड यू द लिंक. एंड हु नोज, यू और आपकी स्पेशल पर्सन या फिर आपकी बहन या फिर आपकी दोस्त के साथ यू विल बी फ्लाइंग टू वनुआतु सून.

0: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हुआ आरज़ आपके साथ एंड आज फादर्स डे के अवसर में आई वांट टू डू साउथ एशियन डैड ट्रांसलेशंस सो आई एम गोना स्टार्ट एन एग्जांपल एंड प्लीज सेंड थ्रू डबल फाइव डबल नाइन पर एंड लेट्स मेक अ बंच ऑफ दीज साउथ एशियन डैड ट्रांसलेशंस सो माय फर्स्ट एग्जांपल इज How much did that cost? So jab aap kuch khareedte ho, then they're like, how much did that cost? It's more like the translation is, अरे पैसा क्यों waste किया? Why did you spend that much money? Let me know top 5, top 9 per, and let's make a list.
1: आज प्यार की हो डील.
2: डील बोले तो?
3: हार्ट हार्ट.
4: हमा यार सौदा सौदा.
2: ओहो.
1: दोनों डील करा सील.
2: Very tight.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हो आर जब के साथ हैं. इफ यू लव टू लिसन टू बैक टू बैक पंजाबी हिट्स देन हमारे पास आपके लिए एक परफेक्ट क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है जिसका नाम है चढ़ती कला पंजाबी हिट्स. ये आपको सिर्फ रोवा में ही मिलेगा. ROVA ऑन प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर. यू कैन डाउनलोड इट एनीवेयर एनी टाइम. और if you'd love to listen just on the website, it's rova.nz. So naam hai playlist ka Chirti Kala Punjabi Hits. All the back-to-back Punjabi hits just for you.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉल स्पीकर सेट समय हुआ आज आपके साथ एंड नेक्स्ट वी विल बी डेडिकेटिंग सम मैसेजेस फॉर फादर्स डे सो टेक्स्ट 3559 पर एंड वी विल रीड आउट

आप सुन रहे हम प्लेइंग पॉलिटिक्स बिकॉज इट्स अ मेहू आर्स आपके साथ इट्स टाइम फॉर फादर्स डे डेडिकेशन एंड वी हैव आदित्य की मैसेज एंड इट गोज लाइक हैप्पी फादर्स डे पापा आई कांट वेट टू सेलिब्रेट यू टुडे ब्रंच के बाद वी विल डेफिनेटली बी गोइंग फॉर क्रिकेट लव यू पा

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट, तो मैं हूं आरजू आपके साथ. नेक्स्ट अब आई बी टेलिंग यू बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाले हैं न्यूज़ एंड थिएटर्स में भी हो, या फिर इवेंट सिनेमास या फिर रीडिंग सिनेमास में.

आप सुन रहे हैं हम प्ले बॉलीवुड स्पीकर से, मैं हूं आरज़ आपके साथ। एंड टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाले न्यूज़न में, आई जस्ट वांट टू किक ऑफ बाय सेइंग मिर्ज़ापुर द मूवी इज नाउ अवेलेबल थिएटर्स में। एंड ये है बेस्ड ऑफ द पॉपुलर सीरीज कॉल्ड मिर्ज़ापुर। एंड अभी तक सिर्फ दो ही दिन हुआ है एंड आई हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स, सो लेट मी नो इफ यू कैन बी वॉचिंग इट। डबल फाइव डबल नाम पर दूसरा मूवी September 11 में रिलीज होने वाला है जिसका नाम है हैवान। इसमें सैफ अली खान और अक्षय कुमार है। एंड वी ऑल्सो हैव September 18 में वाइब रिलीज्ड एक्चुअली डायरेक्टेड बाई कुणाल खेमू। वाओ। And honestly, I only found out this year that Kunal Khemu is a filmmaker because I've only seen his acting work, and I like Kunal Khemu. Or dusra hai The Paradise releasing on September 24. It's an action drama exploring a community fighting against local oppressors. And October mein a very interesting film. People who are big fans of Drishyam and Ajay Devgan will love it, because Drishyam, the conclusion, the final chapter of the thriller, will be releasing on October 2nd.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. और ये अगला मैसेज है डेडिकेशन टाइम बाय द वे सॉरी फादर्स डे स्पेशल. ये अगला मैसेज है फ्रॉम आकांक्षा और उन्होंने लिखा है अपने पापा के लिए. पापा आई जस्ट वांट टू से हैप्पी फादर्स डे. आपने मेरे लिए और मम्मा के लिए जो दिन रात मेहनत की है उसके बिना हम यहाँ कभी नहीं होते. You've always protected me, given me the confidence to chase my dreams and be my absolute rock. Thank you for being the sweetest, strongest dad ever. Happy Father's Day, Papa. I am lucky to be your daughter. Ye gana aapke liye.

तू होगा बदमाश तेरे लाके में छोरे तेरे जैसे पड़े फेड़ मरे खाते में छोरे मरे जासे में लाने की कोशिश न कर मर जा पड़ेगा गड़े घाटे में छोरे।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक सेट्स और मैं हूं आर्ज आपके साथ. इफ यू लव टू लिसन टू दिस अमेजिंग म्यूजिकल पॉडकास्ट जिसका नाम है ट्रेंड मेकर्स, इट्स बेसिकली अ पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी जहां पे एवरी सॉन्ग इज क्यूरेटेड अराउंड अ यूनिक थीम विद ड्राइव शो सैंडी और रिस्पी के साथ. From genres that define eras to tributes celebrating the legends of Bollywood, या फिर iconic singers, या फिर even like actors. So each episode will tell a story through music. So if you're planning a road trip, या फिर you know आप traffic में stuck हो, या फिर आपको hype होनी है, आपको energy boost चाहिए, then or even even if you want to chase sunsets, drive through highways. This is a perfect travel companion on the road. So if you'd love to listen to that, text through TM on 5599 and I'll send you the link. Ya fir aap search kar sakte ho Trend Makers on Rova. Wahan pe aapko ye episode milega. So ROVA ya fir 5599 by TM.

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
2: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
0: सच बताऊं, सही लगता है उसी की ही तो गलती थी
2: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
0: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
2: वरना कहते रह जाओगे।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: रावण में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: What day is Father's Day? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ। अच्छा
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: ब्रूइंग गुड वाइब्स संडे स्टाइल,
9: संडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
8: जायका जो फील हो, टिकल योर टेस्ट बड्स।
10: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग पॉलिटिक्स विद समय हुआ आपके साथ। एंड डोंट फॉरगेट, नेक्स्ट अप वी हैव डेडिकेशंस, सो टेक्स्ट 2599 पर अ मैसेज टू योर फादर एंड अ सॉन्ग यू'd लव टू डेडिकेट।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजू आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर फादर्स डे डेडिकेशन एंड जस्ट वांट टू से अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द इनक्रेडिबल डैड्स आउट देयर एंड फादर फिगर्स और ये अगला डेडिकेशन है निशा से और द मैसेज गोज हैप्पी फादर्स डे पापा शाउट आउट टू माय डैड ऑन हम एफएम आपका गाइड होना और साथ देना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है हैप्पी फादर्स डे पापा Thank you for teaching us the value of hard work and always being there for us. आप हमेशा हमारे हीरो रहोगे. Since मैं आपकी कार्बन कॉपी हूँ, ये सॉन्ग आपके लिए.

0: No matter what you're working on, Mitre 10 Mega Westgate or Henderson, aapke liye sab kuch aasan banata hai. Zabardast range, expert advice, everything you need under one roof. Plus earn air points every time you shop. T's and C's apply. Mitre 10 Mega Westgate and Henderson, helping you get it done right.
1: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
2: Bunnings Warehouse.
1: Lowest prices are just the beginning.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
4: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
4: वाओ दीस कबाब्स आर अमेजिंग स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स
5: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव
6: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
7: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
8: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
7: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
8: Now that I like the sound of.
7: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
9: मिर्जा पुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
10: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
11: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया बनाना है
10: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज
12: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
10: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
13: We gotta go. Are you ready?
14: Come and take a trip with me.
15: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. Two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
16: Vacation.
0: Boarding. Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
17: The beat of Bollywood.
18: World's best. Hamari koi brands nahi hai.
17: Chill, sip, smile.
19: This is Sunday Breakfast.
20: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजब के साथ एंड इफ यू'd लव टू चेक आउट दिस इनक्रेडिबल म्यूजिकल पॉडकास्ट जिसका नाम है ट्रेंड मेकर्स आपको रोवा में मिलेगा ROVA में या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो TM255599 आई सेंड यू द लिंक बेसिकली एक म्यूजिकल पॉडकास्ट है एंड इट इज़ अ पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी वेयर एवरी सॉन्ग हैज़ बीन क्यूरेटेड अराउंड अ यूनिक थीम इन ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़बे फ्रॉम जॉनर्स दैट डिफाइन एरास टू ट्रिब्यूट सेलिब्रेटिंग द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड आइकॉनिक सिंगर्स या फिर पोएटिक लिरिसिस्ट So, every episode, ek story kehta hai through music. So, if you're planning to go on a road trip, ya fir aap traffic mein stuck ho, ya fir aapko sirf, you know, aapko energy boost karni hai, you want to get hyped up, then you might want to check this out. Iska naam hai Trendmakers, and you can find it on Rova. Ya fir aap mujhe text kar sakte ho 5599 per TM.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट सेट्स और मैं हूँ आरजू आपके साथ. एंड एक रीसेंट रिसर्च में ये बताया गया है कि हाउ अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन न्यूजीलैंड हैव बीन स्पेंडिंग इवन मोर टाइम ऑन स्क्रॉलिंग ऑन देयर पर्सनल फोन्स या फिर आईपैड में मोर देन योर जॉब की 40 आवर्स अ वीक की टाइमिंग. सो बेसिकली मोर देन 40 आवर्स. एंड honestly, I haven't checked my screen time in ages, so I will reveal it to you. As someone from Gen Z, I can definitely say I love doom scrolling on my phone. I know it's bad, but I do that a lot. But yeah, I'll reveal to you my screen timing. Aap ki bhi aap send kijiye mujhe 5599 per, so I don't feel alone. Let's share each other, be vulnerable about our screen timing. And yeah, I'll reveal it to you next.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor Pouch Packs, $9.99 each, or Oreo Cookies Select Size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favorite Mazda. Mazda.
9: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
10: The masalas are ground fresh in-house every single day.
9: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
10: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
9: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
11: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
12: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
13: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
12: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
14: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
12: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग DBC।
15: Good vibes, Sunday style.
0: Sunday breakfast on Hum.
16: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ाब के साथ। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ एक रीसेंट रिसर्च में ये बताया गया था कि मोस्ट पीपल हु लिव इन न्यूजीलैंड हैव बीन स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन देयर फोन्स देन आपकी नॉर्मल वर्क टाइम व्हिच इज 40 आवर्स अ वीक। सो हफ्ते में मोर देन 40 आवर्स यू आर यूजिंग योर फोन। And I have just checked my screen time and I am also one of those people क्योंकि मेरी average daily average है 11 घंटा। Oh my god, 11 hours, and it even says 17% increase from last week. And in my defense, मेरी 9-to-5 job is a social media job, so मुझे I'm sure discount मिलेगा hopefully, yeah you know. please tell me कि it's because of my calm, क्योंकि you know आपको TikTok बनानी है for your work, या फिर I have to take photos on my phone, या फिर I have to you know sometimes upload, edit कभी कभार on my phone, so I would say कि लगभग 3-4 hours तो काम के लिए है। And you know I also have to do research purposes, or am I making excuses here? But yeah, that's a crazy screen time. I definitely need to work on this. I'm pretty sure I could get this less. Oh my god. Honestly, a bahut humbling moment hai. Ab wow. I don't even want to look at all the different apps I've used. Oh my god, my most used app is Instagram. Yeah, and there we go. There we go. But yeah, let me know aapki screen time 5599 per

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकिंग सेट सो मैं हूँ आरुष आपके साथ एंड आई लव व्हेन आई सी न्यू डिटेल्स अबाउट नई फिल्म सो आई कैन लुक फॉरवर्ड टू दोज मूवीज एंड सेइंग दैट कार्तिक आर्यन की भी न्यू फिल्म शूटिंग शुरू हो चुका है लंदन में और ये मूवी का नाम है कैप्टन इंडिया एंड या देयर इजंट मच दैट आई नो एज ऑफ नाउ But the actor had posted a series of photos on Instagram highlighting airports, music, luggage or his shooting script hinting that shuru ho chuka hai unki next preparation film ke liye and I'm just excited. Aapko kaisa lagta hai Kartik Aaryan? Let me know on top 599 per.

0: फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: व्हाट डे इज फादर्स डे? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners, and scan your card to enjoy more points.

जो कुछ भी किया है उसके लिए दिल से थैंक यू पापा. यू आर द ट्रू पिलर ऑफ आर फैमिली एंड वी आर सो प्राउड टू बी योर किड्स. हैप्पी फादर्स डे पापा. दिस सॉन्ग इज प्लेड विद सो मच लव जस्ट फॉर यू.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स सो मैं हूं आरजू आपके साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी ऑल डे टुडे स्पेशली आज नो फादर्स डे है वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द पापाज आउट देयर एंड फादर फिगर्स टेक केयर स्टे सेफ एंड आई विल बी हियर बैक सून.

0: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Tūriki. Altogether Auckland.
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan. Plus 50% off sleepyhead beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
3: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. T's, C's, fees and credit criteria apply.